हमें अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाट बिखै बिख खाई। माया मोह भरम पै पूले, सुधदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ की।

जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक थोक का दाता, जिसकी शरण सर्व सुख पावे है, तिसके दर सब पाप मिटावे है, अवर सयान सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा नानक, तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक, सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाऊ, तिसके संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी, सतगुर सिखी करै प्रतपाल, सेवक हो गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते हटै, सतगुर सिखो नाम तन दे, गुर का सिख बड़भागी है, सतगुर सिखा हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल संभारै, गुर के गृह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सहै, आपस को कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सद त्यावै, मन बेचै सतगुर के पास, ते सेवक के कार्ज रास, सेवा करत होए नह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिसवे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै, सो सतगुरु जिस हृदय हर नाव, अनिक बार गुर को बल जाओ, शर्म निधान जी का दाता, आठ पहर ब्रह्म पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ भरम, बहुत सह सियाण पलया न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइए, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करन अघाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अख्याओ, जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखै होए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावित सलय मिलाए, जे भाए कुस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोल न पहुँचत प्राणी, अगम अगोचर प्रम निर्बानी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत के नैन पाई, अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, साध बलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, हो हर रस पावै, जन कोय अमृत पीवै, अमर सो होय, उस पुरख का नाहीं कदे विनाश, जाकै मन प्रगटे गुणतास, आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवको दे, मोह माया के संग न लेप, मर में राखै हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख तहते नासे, तप्त माहे ठाठ वरताई, अनंत भया दुख नाठे भाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, पौ चुका निरपौ होय बसे, सगल व्याध मन तीखै नसे, जिसका सातिन कृपा धारी, सात संग जपना मुरारी, थित पाई चूके प्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवण, निर्गुण आप सरगुण पियोही, कला तार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोय, सर्व निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग पय, प्रगास साध कै संग रच रचना, अपनी कल धारी, अनिक बार नानक बलिहारी, सलोक साथ न चलै बिन भजन, बिखिया सगली शार, हर हर नाम कमावना, नानक इहु धन सार, अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपाव समीत बिसार हो, चरण कमल हृदय में उरतार हो, करन कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो हो नाम हर वथ, यो तन संच हो वह भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहि, सर्व रोग नानक मिट जाहि, जिस तन को चार कुंठ उठतावै, सो तन हर सेवा ते पावै, जिस सिखो नित बांछै मीत, सो सुख साधु संग प्रीत, जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरनी, अनकुपावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवख दलाए, सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान, मन पर बोधो हर कह नाए, दै दिस्तावत आवै ठाए, ताको बिगन लागै कोय, जा कै हृदय बसै हर सोए, कल ताती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिनसै पूर्ण होयास, भगत पाए आत्म प्रगास, तित कर जाए बसै अविनाशी, कहो नानक काटी जम फासी, तत् विचार कहे जन साचा, जन मरै सो काचो काचा, वागमन मिटै प्रभ सेवा, त्याग सरन गुरुदेव, इउं रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनिक उपाव न छूटन हारे, सिमरित शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए, संग न

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हरे अगमा अगम अपारा सब त्यावै है सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतोह जी सब दुख विसारन हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवै है जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावै है हर त्यावै तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त पय जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन हर निरभाओ त्याया जी तिनका भाओ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई पुन राशिस का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुब्रता, किलबिक सगल देखो हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन वांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़ेला। सुने गुंग

सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो ही बखान्यो। दोहो राम।

दास गोविंद दास तुहार रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तम पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आइया शब्द

प्राप्त हो गए। एक किनका निमक। इस करके सतगुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज बिल्कुल स्पष्ट करदे कहिंदे कि मिटे पाप जपिए हर बिंद। जिदन असी चरण सरण विच जाना शुरू कर दिता, पातशाह जी कहिंदे चरण सरण दे विच जाण दा बहुत वड्डा महात्म है भाई गुरदास साहब जी। चरण सरण गुर एक पेंडा जाए चल सतगुर कोट पेंडा, आगे होए लेत है करोड़ां कदम अगे हो के लैण वास्ते आउंदे। महाराज जी कहिंदे सतगुर चरण सरण चल जाए सिख भाई गुरदास साहब तां चरण सरण जगत चल आवे। कहिंदे एक बारी चरण सरण विच जा के वे सारा जगत तेरे चरण सरण विच आउणा शुरू हो जाएगा। भाई लैणा गए सन, सारी दुनिया गुरु अंगद साहब जी के रूप में नमस्कारा करन लग पे। अगे फिर पातशाह समझाउण दा यतन करदे, पातशाह जी कहन लगे कर हर कर्म। कहिंदे ने हर करते पुरख दे हुकम दे विच धार्मिक कर्म कर, परमेश्वर दे मिलाप दे कर्म कर। श्रवण हर कथा, कहिंदे ने सुनन दा यतन कर। की सुनिए की महाराज? कहिंदे हर अकाल पुरख दी कथा, उहदी अकथ कहानी नूं सुनन दा यतन कर। हर निरंकार वाले कर्म कर, कर हर कर्म श्रवण हर कथा। उहदे नाल की होएगा? सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी निर्णय करके कहिंदे कि हर दरगह नानक उजल मथा। जिद्दन कर हर कर्म, हर करते पुरख के हुक्म दे विच कर्म करांगे, श्रवण कन्ना नाल करते पुरख की कथा उहदी उस्तत नूं सुणांगे, महाराज कहणगे हर दरगह नानक उजल मथा। सतगुरु जी कहणगे उहदे भाग मस्तक जिहड़े हन मथे दे भाग जाग पैणगे, सतगुरु कहणगे उहदा मथा उज्जवल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, मस्तक निर्मल हो जाएगा, मैल तो सखना होवेगा। हर दरगह नानक उज्जवल मथा, परमेश्वर की दरगाह दे विच उहदे मथे की लकीर बिल्कुल उज्जवल पवित्रता सहित मैल तो रहत हो जाएगा। इस करके सतगुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज जी कहन लगे हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथानी। यही है ना जीवन में सतगुरु कहन लगे जेठ का तपया होया महीना भी उन्हां वास्ते रंगीला बन जाता है, ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। किन्हां वास्ते? हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथान। महाराज जी कहने जिहदे मत्थे ते भाग जाग जाण, जिहदे मस्तक दे उपर भाग बिल्कुल प्रतक हो जाण। इस करके सतगुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की यह उस्तत साडे जीवन में है, जिथे सतगुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने अज दे इस पावन शब्द राही सानू समझाउण दा यतन किया कि जिथे आप कृपा मस्तक ते सतगुरु साहब महाराज कहणगे भाग निर्मल प्रगट हो जाण, मथा जिहड़ा है वो उज्जवल हो जाए, जिन्हों सतगुरु जी ने कहा साध संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत। मुख की उज्जवलता मस्तक की उज्जवलता तो है ही है। महाराज कहन के सारी की सारी मैल सत संगत दे विच बैठिया निकल जाती, क्योंकि सतगुरु जी ने कहा भरिया हथ पैर तन दे, हथ पैर तन शरीर सारा जिस वेले भरिए भर भर जाए तो भर जाण नाल कहिंदे ने शरीर नूं मिट्टी चंबड़ जाए, खे चंबड़ जाए, भर जाए तो फिर भरिए हाथ पैर तन देह पानी धोता उतर खेह। महाराज कहिंदे उतर जाती है सो खेह जिहड़ी खेह लगी हुई। मूत पलीती कपड़ होए, महाराज कहणगे गंदगी नाल कपड़े पलीत हो जाण, दे साबून लईए ਉਹ ਧੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਨ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਹਿ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕਹਿ ਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨਾਲ ਉਤਰ ਸਕਦੀ, ਧੁੱਪ ਸਕਦੀ ਮੈਲ।

तन दौलत बड़ा कोल है पर कोई औलाद नहीं। हर रोज सतगुरां दे अगे तरले करदा है, सतगुरु तू सब दी झोली भरदा है मेरी भी झोली भर। सतसंगियो जंग मंगियाणी दी गल है पाकिस्तान दी ए साखी। सतगुरां ने भाग लाए इहदे घर पुत्र होया। आपां संसार विच तकिया है दात प्यारी बिसरिया दा तारा। जदों दाता मिल जान ते देण वाले नूं भुल जांदा है। मंगदा गुरुद्वारियों है ते खुशियां ठेकियां ते कलबां विच जाके मनांदा है। आ पुत्र होया ना गुरु नूं भुल गया। शराबां दियां पेटियां खुल गईयां ते अपने मित्रां नूं शराबां ते कबाबां दे नाल खुश कर रहा है। समां बीतदा गया, पुत्र वड्डा हो गया।

एक दिन अपने बाप नू धक्के मार के बाहर कढ़ दिता, तू मेरा प्यो नहीं तू मेरा दुश्मन है। नौ भी किड्डे बोल कबोल बोलती है, एडिया एडिया उच्चिया कोठिया ते बड़िया बड़िया कारा खलोतिया ने, ते ए सेठ गेटा दे बार बैठा प्रशादे तो भी मोहताज है। आज पुत्र जिनू एडिया मनता नाल मनिया सी एक प्रशादा भी देण नू तैयार नहीं। बाबा नंद सिंह जी नानक सरवाले अज इस नगरी विच आए, बाबा जी दी सोभा सुनी ते दीवान लगा होया है, समाप्ति होई ते जाके बाबा जी दे चरण पकड़ ले। बाबा जी मेरे

तेरे घर दे अगे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सवारी लंघनी है। ते बाबा जी कहिंदे सन सारी गली विच झाड़ू ला दे, लोकां नूं पता लग जावे कि अज इस दे मालक ने लंघना है, अज इस दे गुरु ने लंघना है। ऐवें उपरों उपरों आखी जांदा है भी सारा कुछ तेरा है। आ संसार विच तको घरां विच कोई समागम है ना, ते जदों बाजार कपड़े लैण जांदे हां अपने वास्ते हजारां रुपईयां दे कोट पेंट, ते गुरु वास्ते ये दुकानदार नूं की आखदा है भी कोई 51 रुपईयां दा रुमाला गुरु वास्ते दे दे। ओए गुरसिखा की तेरी भावना नूं होया है, जिन्हें तेनू सारा कुछ दिता ओदे बदले जदों तू रुमाला वस्त्र खरीदने ने उदों क्यों जेब कुटदा है, उदों क्यों सरफे ते उतर आया है। नहीं बे, दिलों आख मनो आख सतगुरु सारा कुछ तेरा है, मेरा इस विच

मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर त्यायो पारस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायो चरण तपर सक्याथ चरण गुर अमर पवल रै हाथ ता पर सक्याथ हाथ लगे गुर अमर पै जी ता पर सक्याथ जी गुर अमर पणी जै नैन ता पर सक्याथ नैन गुर अमर पखी जै सरवण ता पर सक्याथ सरवण गुर अमर सुनी जै सक्याथ सोहियो जित ही वसै गुर अमरदास निज जगत पित सक्याथ सो सिर जालब पड़े जो सिर निवै गुर अमर नित सक्याथ सो सिर

0: प्रसाद के जाहर हजूर है के हाजिर हजूर है
1: हमें सुलसलाम है चमकतुल कलाम है
0: साहब के हुस्नल चराग है।

0: कन है रियासल फिकन है
1: कलंकन परनास है समस्तुल निवास है
0: अगंजुल गनीम है रजाए करहीम है
1: समस्तुल जुबा है के साहेब किरा है
0: जरकन परनास है बेस्तुल निवास है
1: के सरबुल गवन है हमेशुल रमान
0: है तमामुल कमी जान समस्तुल अजीज है
1: परन परम ईस है समस्तुल अदीस है
0: अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है
1: जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है
0: करीबुल कमाल है जजुर्रत जमाल है
1: के अचलन प्रकाश है के अमितो सुबा से
0: अजल स्वरूप है के अमितो प्रभुत है
1: के अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है
0: के अचलन अनंग है के अमितो पंग है
1: मधुपार छंत प्रसाद मुन मन पर नाम गुन गन मुदा
0: हर भर अगंज हर नर पर पंज
1: अन गन पर नाम मुन मन सलाम
0: हर नर अखंड पर नर अमंड
1: अन पव अनास मुन मन प्रकाश
0: गुन गन पर नाम जल थल मुदाम
1: अन छिज अंग आसन अपांग
0: उपमा अपार गत भेद उदार
1: जल थल अमंड दिस्विस अपांड
0: जल थल महंत दिस्विस बेअंत
1: अन पव अनास ते तर्ज तुराज
0: आजान बाहु एके सुदाहु
1: ओंकार आद कथनी अनाद
0: खल खंड खेल गुर बल अकाल
1: कर कर पर नाम चित चरण नाम
0: अंचित गात अजित न बात
1: अंजज गात अनरंज बात
0: अंडुंड पंडार अंडठ पार
1: आडीठ तरम अतडीठ करम
0: अनभरना अंत

0: जग के कर
1: माना है, जग जान्या है,
0: सरबन पर है, सरबन कर है,
1: सरनाचा है, सरनाचा है,
0: करुणा कर है, विसंबर है,
1: सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है,
0: ब्रह्मंड से कालखंड से
1: पर है, गुणा कर है।

0: पंजन है और गंजन है,
1: तापन है जब जापन है,
0: अकलन कृत है सर्वाकृत है,
1: दाता कर है हरता हर है,
0: परमात्म है सर्वात्म है,
1: आत्म बस है जस के जस है।

0: समस्तुल पन्नामे समस्तुल पन्नासे
1: अकंजुलानामे समस्तुल निवासे
0: श्रीकामन पेपूते समस्तुल स्वरूपे
1: कुकर्मं पन्नासी सुतर्मं पभूते
0: सदा सच्चिदानंद सत्रण पन्नासी
1: करीमं कुनिंदा समस्तुल निवासी
0: अजाय पभूते गजाय गनी में
1: हरियं करियं करीमुल।

0: सन समूह अनेक मति के,
1: सारे देश को देख रहे मत को न देखे प्राण पति के,
0: श्री भगवान की पाई कृपाओं के
1: माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे,
0: तुरंग तुरंग से कुदल पौन के गौन को जात निवारे,
1: हरि पुजान के पूप पली विद्याव शीश न जात बिचारे,
0: देते पहे तो कहा पे पूप पे अंत को न गई पाई पधारे,
1: जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत टोल में दंग नगारे,
0: गुंजल गोड के जान के सुंदर हिंसती है राज हजारे,
1: पूत पविक पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे,
0: श्री पद श्री भगवान पदे प्रिय अंत को अंत के ताम सिदारे,
1: तीरत नान दया दम धाम सुसंजम नेम अनेक विशेख है,
0: वेद पुराण कते पुराण जमीन से बात समान के देख है,
1: कौन आज अति जतार सबे सब विचार हजार रख देख है,
0: श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लेख है,
1: सुध से बाद दुरंत दुबा सुसाद सना दुर जान दलेंगे,
0: पाई गुमान परे मन में कर पर्वत पंखर जाह लेंगे,
1: तोर अरीर मरोर मुहासन माते मदंगन मान मलेंगे,
0: श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे,
1: पार पड़े बड़े यार विचारे सार की तार पचैया,
0: तोर देश मलिंद मुहासन माते के ज्ञान के मान मलैया,
1: गाड़े ग्राम को तोड़न हासु बातन ही चकचार लवैया,
0: साथ श्री सबको सिर नायक जाचक लेख सो एक भैया,
1: दानव देव निन निसाचर पूत पविक पुआन जपेंगे,
0: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप जपेंगे,
1: उन प्रतापन बाट जैतुन पापन के बो पुंज कपेंगे,
0: सात समूह पर सात फिरे जल सतल सबे लोग चपेंगे,
1: मानव इंद्र के दिन रात अब जोंत लोग को राज करेंगे,
0: कोट स्नान गजात दान अनेक स्वयंवर साथ भरेंगे,
1: ब्रह्मेश्वर विषण सची पद अंध फसे जम फांस पड़ेंगे,
0: ये नर श्री पद के प्रथ है पद तेल और फेर न दे तरेंगे,
1: कहां पे हो जो दो लोचन मुन के बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगाए हो,
0: नाथ प्रियो ये सात समुद्र लोग के ऊपर लोग गवाए हो,
1: मास के ओ विज्ञान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बिताए हो,
0: साच कहो सुन लियो स

0: का शिवाय जी की फतेह पाँच साई रश्मि कभी बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ रचा पूर्ण होए चित की इच्छा
1: बचाओ
0: करते करिया सब बैरन को हाथ से करिया।

0: साहिब सन साहिब प्यारे काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जी अवतरा
1: काल पाए कर विषम प्रकाश शासक।

0: कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए पावे मुकत ना होत है कोई पिछो विवेक किया जाए फिर मुकत पाए लाग चरनी सदगुरु सबद सुनाए
1: कहे नानक विचार देखो बिन सत

तू ठाकुर तुम पैर दास जियो पिंड सब तुम मात पिता हम तुम्हारी कृपा में कोई न जाने तुमरा अंत ऊँचे थे

वंदना हर वंदना, गुण गाव हो गोपाल राय, रहाओ वड़े भाग पेटे गुरुदेवा, कोट प्राद मिटे हर सेवा, चरण कमल जाका मन रपे, सोग अगन तिस जन नाम व्यापे, सागर तरिया साधु संगे, निरपौ नाम जप हो हर रंगे, पर तन दोख किछ पाप न फेड़े, जम जंदार ना आवे नेड़े, तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उदरे प्रभ शरणाई, तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उदरे प्रभ शरणाई, सो कहो टल गुरु सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसय गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटीए, तुद जिठे सच्चे पातशाह, बल जन्म जन्म दी कटीए, सज्जन सच्चा पातशाह,

माला तिलकुल लाटं दोय धोती वस्त्र कपाटं जे जान ब्रह्मं कर्मं सपोक्ष निश्चो कर्मं कह नानक निश्चा त्यावै इन सतगुरु आठ न

सो कहो टल गुर सेविए, एहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसम दी, नूर अरशों खुरशों चटिए।